कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आंखों का, किस्मत में सूझे न क्या कर डालूं हाँ।